देव पिया मानो के नाम जपण वालियां दे देवते, नाम जपण वालियां दे वड्डे जिन्हां नूं सारियां ने सत्कारिया, ऐसे भगत नाम देव ने बचपन दे विच नारायण नूं प्रगट करके दुध पिलाया ते शब्द उचारण होया दूध पियो गोविंदे राए, दूध पियो मेरो मन पतिया, नहीं ता कर को बाप रे साए। ते कहंदे ने आखर भगती परवान होई नामदेव जी दी, ते दूध पियाए भगत कर गया, नामे हर का दर्शन भया। नामदेव नू हरी

थोड़ी दूर बाहर स्वामी ज्ञानेश्वर जी ने विश्राम कीता। देखिया नेड़े एक खूह दिखाई दे रहा है, मगर उस दे विच पानी कोई दिखाई नहीं देंदा। खूह ते है मगर पानी कोई नहीं। ते ज्ञानेश्वर जी महाराज ने सोचिया, देखिया भई ए मेरे नाल जो चले आ रहे हन तीर्थां ते भ्रमण करदे करदे एते हुण बहुत प्यासे हन, कोई युक्ति कीती जावे तां जो इन्हां दी प्यास बुझाई जावे। ते ज्ञानेश्वर जी ने अपना लोटा लिया, रस्सी नाल बनिया ते अपने योग बल दे नाल उस खूह दे विच जो पानी सी जो थले सी उसनू लोटे विच भरिया ते बाहर कढ करके नाले ते अपनी प्यास बुझांदे गए। नाले फिर

जिस तरह ही तत्काल ए अरदास सुनी ते उसे खूह दे विच्चों एक कड़क दी आवाज आई, मानो के धरती फट गई उस खूह दी, ते थले जो पानी सी ओ लबा लब खूह दे विच पर आया। जदों देखिया ज्ञानेश्वर जी ने और उना दे सेवका ने के भगत नामदेव दी अरदास उस नारायण दे चरना कमलां विच कबूल होई है, तां सारे आए

नामदेव हुण तू अपनी प्यास बुझा ले, तेरी नारायण ने सुन लई। आइंदा समय विच जेड़े भी इस राह तो गुजरन गे ओ अपनी प्यास तेरी अरदास दी शक्ति द्वारा बुझाया करनगे।

ऐसा गुरु सिख जिसका जीवन सेवा सिमरन परोपकारी है, भाई साहब कहते हैं कि बेशक उसनू कह दियो जेड़े जोड़े उसने पहरे हैं वह उतार देवे, पता नहीं किस चमड़े दे होंगे। आ मेरे तन दे चमड़े दे जोड़े बना के ऐसे गुरसिख नू पहना दियो जिसका ऐसा जीवन है। गुरसिखी गुरसिख सुन अंदरों सियाणा बाहरों भोला, शब्द सुरत सावधान है बिन गुर शब्द ना सुने ही बोला। जिथे गुरु की बाणी दी विचार होंदी है झट पहुंच के कन दे के सुनदा है, ते जिथे निंदिया चुगली हो रही है उथों कन्नी कतरा जांदा है, क्योंकि निंदिया चुगली सुनन नाल पुन सड़ जांदे हन। सत संगत विच बह के गुरु की बाणी सुनन नाल पुन वध जांदे हन। इसलिए गुरु के सिख दा ऐसा जीवन भाई साहब कहंदे हन बेशक मेरे तन दे चमड़े दे जोड़े ऐसे गुरसिख नूं

अरदास ने अर्ज करनी है, अरदास करनी। अरदास दा मकसद एहो ही है कि आउन वाला जो समा है मनुख उस तो जानू नहीं कि आउन वाले समय दे विच की हो सकता है, सुख मिल सकता है या दुख मिल सकता है, मगर जो परमेश्वर है, जो साडा साईं है, साडा खसम है, उसनू ज्ञान है, वो जानदा है कि आउन वाला समा कैसा है। ते मनुख उस शक्तिमान परमात्मा दे चरना कमला विच ए बेनती करदा है कि है मेरे साहिब, मेरा आउन वाला जो समा है उस दे विच मैनू सुख प्राप्त हों, मैं इसे करके तेरे चरना कमला विच अरदास करदा। ते साहिब फरमाउंदे हन कि ए गुरसिख, तू उस दी रहमत दा पात्र बन, क्यों जो ओ तेरे ते मेहर कर देवे ते तेरे सारे कारज रास हो जाने। मेहर करे जिस मेहरवान ता कारज आवे रास, साहिबां दा फरमान।

दयाल होए मेरा स्वामी, किस गुरसिख गुरु उपदेश सुनावे, जन नाबिक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की।

जितने माई भाई बैठे हो सारे प्यार नाल रसना पवित्र करया करो। पोथियां सामने रखण दा एहो एक फायदा है कि इंसान चंगी तरह बोल सकदा है। इसलिए सारे प्यार नाल करीबन सारी संगत ही पोथियां रखदी है, फिर पढ़दे क्यों नहीं। पढ़ो सारे, कोई रसना खाली ना रवे। आओ साहेब पंचम पातशाह जी दियां कैसियां ए प्यारियां तुकां ने, पढ़ो सारे।

बिन बाजे कैसो नृतकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जेवा कहा को बकता, बिन श्रवना कहा को सुनता। बिन नेत्रा कहा को देखे, नाम बिना नरक कहीं न लेखे। बिन विद्या कहा को पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित। बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हों त्याग कहाँ को त्यागी। बिन बस पंच कहाँ

गोविंद ना भजे अहं बुद्ध माता जन्म जुए ज्यों हारे। नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे। छापर बांध सवारे तृण को द्वारे पावक जारे। कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे। ओढ़े वस्त्र काजर में

द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नूं सिंह द्वार किया। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उस नूं होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया गौ नाल जिस तरह उसे दी उलीक विच बैठे हन अंतरयामी भगवान कृष्ण। दूरों सुदामे नूं देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाइसा फरमान करदे हन।

जी ने बड़े ही गहरे जाके बड़े ही गहरी विचार विच जाके फरमान कीती है। किसे मित्र नू मिलना होवे ते मित्र नाल हाथ मिलाया जांदा है, किसे मित्र नू मिलना जाए ते गलवकड़ी विच लिया जांदा है, पर किसे मित्र नू मिलना होवे ते अपना सिंघासन छड़ के भी जाया जा सकता है दूरों देख के। मगर भगवान कृष्ण सिर्फ सिंघासन छड़ के सुदामे वाल नहीं बदे, कहंदे ने इतनी निम्रता नाल भगवान कृष्ण वधे सुदामे वाल, और सुदामे दे कोल जाके कहंदे ने सुदामे दी पहले प्रदक्षिणा ले। सुदामा खड़ा है और भगवान कृष्ण ओदी प्रदक्षिणा ले रहे हैं, और प्रदक्षिणा लेके फिर सुदामे दे पैरी पैंदे हन ते पैरी पैके सुदामे गरीब नू अपने गले लगांदे हन। भाई साहब गहरे तल विच जाके सारे संसार नू ए मैसेज दे रहे हन भगवान कृष्ण दा, क्योंकि सुदामा उना दा बाल सखाई मित्र है, ते बाल सखाई मित्र होण दे नाते ओ दोनों एक गुरु दे शिष्य सन। ते जदों पहली वारी देखिया सुदामा मेरे द्वार ते आया है, कहंदे ने दूरों देखिया देखते सुदामे वल रहे हन, पर सुदामे दे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। उस गुरु दे जिस गुरु पासों दोना ने बचपन दे विच सिखिया लई है। सुदामे दे विच्चों भगवान कृष्ण अपने गुरु दे दर्शन करदे होए सुदामे वल वधे ते प्रदक्षिणा लई जिस तरह के अपने गुरु दे ले रहे हन, फिर जिस तरह प्रदक्षिणा लैके पैरी पै गए, और पैरी पै के जदों तक पैरी पए हन उदों तक सुदामे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। ज्यों गुरु दे दर्शन हो गए ते सुदामे नू अपनी गलवकड़ी विच लाया, ते कहंदे ने फिर सुदामे नू लैके सिंघासन वल वधे।

भाई साहब भाई गुरदास जी जेड़ी रमज तक पहुंचे कहंदे ने दोनों ही अपने अपने असूल ते कायम ते ए जानदे होए भगवान कृष्ण कि सुदामा अपनी जबान तो मंगेगा नहीं ते भगवान कृष्ण ने बड़ा प्यार कीता परदखना लई पैरी पै के गले लगाया और ओदे चरण तो के उसनु आपने सिंघासन ते बिठाया ते सिंघासन ते बिठान तो बाद उसनु बड़ा प्यार कीता इतना प्यार कीता ते प्यार करन तो बाद भगवान कृष्ण कहन लगे सुदामा बचपन तो हुण जवानी आ गई है इतनी उम्रा हो गई है बड़ा चिर होया है मिलिया नू कोई गुरु दी सेवा दी कथा सुना गुरु दी सेवा दी कथा दी महानता दर्शा रहे हन कि गुरु दी सेवा दी कथा करन नाल गुरु याद आउंदा है गुरु याद आउन नाल गुरु दा दस्या होया नाम याद आउंदा है ते गुरु दा नाम याद आउन नाल जदों नाम दसम द्वार दे विच टिक जांदा है एकागर चित मन हो जांदा है भाई साहिब भाई गुरदास जी फरमान करदे हन कहंदे हन उस वक्त जितने भी पिछले माड़े कर्म हन ओ सारे दे सारे कटे जांदे हन भाई साहिब फरमान कर रहे हन गुरु दी सेवा दी कथा दी महानता ते गुरबाणी विच भी स्वामी रामानंद जी महाराज दा एक शब्द है ए स्वामी रामानंद जी महाराज

इना पासों गुरु दीख्या लेके नाम लेके नाम जप के संसार नू उस परिपूर्ण परमात्मा दे नाल जोड़िया। इना दी बाणी दा शब्द है कि शब्द की है, शब्द किस तरह कोट कर्म करोड़ा ही माड़े कर्मा दा नाश करदा है। स्वामी रामानंद जी फरमान

परमेश्वर की भगती करते हैं, जो अकाल पुरख का सिमरन करते हैं। पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज आप कहते हैं, फिर ओ परिपूर्ण परमात्मा सदा उन्हां जपन वालियां दे अंग संग है। ए शब्द गुरु अर्जन देव पातशाह दा उचारण कीता होया, जिदे विच आप कहंदे हन, हे प्रभु हर का नाम हृदय नित ध्यान। हे प्रभु मैं तेरा नाम सदा हृदय विच वसावां, हर का नाम हृदय नित ध्याई, सदा तेरा नाम मैं हृदय विच जपां, मन करके जपां। हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। ए नाम जपण दे सदके जिन्हां जिन्हां ने भी मेरे नाल बह के तेरा सिमरन कीता है, नाम जपे है और जपणगे, हे प्रभु कृपा करी उन्हां सारियां नूं ही अपने नाम दे सदके तार लई। हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। ते जो नाम जपदे हन गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे न, फिर उन्हां दे अंग संग हुंदा है गुरु। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा समाले। जो सिमरनगे परमेश्वर दा नाम, साईं दा नाम, आखे सदा गुरु उन्हां दे अंग संग है। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा समाले। और जद नाम जपेगा प्राणी, नाम जप के उसकी आत्मा परमेश्वर दे चरणा नाल जदों एक मिक हो जाएगी। बाबा नंद सिंह जी महाराज क्या करते सन, जदों जीव नाम जपदा है फिर नाम जपन वाला और नामी विच फर्क नहीं रह जाता। हर हर जन दो एक है, बिप विचार किच नाही, जल ते उपज तरंग जियो, जल ही बिखे समाए। नाम जपन वाली आत्मा परमेश्वर दे एडे नेड़े हो जांदी है कि फिर जदों संसार दे दुख आउंदे हन तां उस आत्मा नूं ओ दुख दुखी नहीं कर सकदे। दुखां विच भी रह के ओ सदा परमात्मा दा शुकराना करदा है, पाणी मंदा है ते की कहंदा है, तेरा किया मीठा लागे। हे प्रभु तू सुख विच रखिया, मैनू दुख विच रखिया है, ए तेरा ही हुक्म है, तेरा ही पाणा है। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने, मैं तां हे प्रभु सदा तेरे चरणा विच यही आराधना करांगा कि तू मैनू अपना नाम बख्श, मैं तेरा सिमरन करां, अमृत वेले उठ के तेरी भक्ति करां। और जो परमात्मा दी भगती करदे हन, गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने, गुरु सदा उन्हां दे अंग संग है।

प्रति इस तरह बयान करते हैं, अमले अमल ना अंबड़े, मच्छी नीर ना होए। जिस तरह अमली अमल तो बगैर नहीं जी सकता, नीर कहंदे ने पानी, मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकती, इसी तरह

अपने सह दे नाल अपने प्रभु दे नाल रथे गए पाव जिन्हां ने अपना मन अपने साहिब दे नाल जोड़ लिया ओ सारियां नूं चंगे लगदे ने क्यों जो हर का प्यारा सो सबना का

और नाल उन्हां दे पति जयराम जी ओ भी आ रहे ने। बेबे नानकी वेड़े विच दाखल होए और भज के अपने पिता मेहता कालू दे गल लगे। अखां विच अश्रू पै वगदे ने ते कहन लगे, पिता जी मेरा वीर नहीं आया। मेहता कालू जी कहन लगे, धीए असां तां इह सोचिया कि जे तू आई है ते नानक भी जरूर आवेगा। इतने नूं भाई अजय राम जी भी अंदर आए। मेहता कालू जी कहन लगे, धीए जा अपनी मां नूं मिल, उन्नू भी दिलासा दे जिहदियां अखां विचों ते हुण अथरू भी

हाँ वारी बन जा खनिए बन जा तो साहिब के नामे ऐ परमेश्वर मैं तेरे दुबारी तेरे नाम तो कुर्बान जाना। तन गुरु नानक साहब जी बयान करते हैं आओ अपनिया बिरतिया उस पास ले चली गुरु नानक साहब के पिता मेहता कालू जी धन गुरु नानक साहब का राह पै तकते बेबे नानकी गुरु नानक साहब के वड्डे भैन।

अपने पिता मेहता कालू नू मिले। नाल बेबे नानकी दे पति आईया जयराम भी आए। बेबे नानकी जी पिता मेहता कालू नू मिल के अपनी माता माता तृप्ता नू गले लग के मिले, तेनू गल ना लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गया ते नाले कहन लगे जीए हुण ते बड़ा चिर हो गया नानक नू देखे तू आई है, कुछ भरोसा होया मन नू कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पासे पाईया जय राव अपने सौरा साहब मेहता कालू जी दे पैरां ते मत्था टेके मेहता जी ने प्यार दिता ते पाईया जय राम जी भी पुछदे ने पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए, असी ते इस आस्ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज जी दर्शन होंगे। पाईया जय राम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब दे पाईया लगते ने जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने पर ओ रिश्तेदारी घट और गुरु नानक साहब दे सेवक ज्यादा है। मेहता कालू जी कहन लगे जय राम तुसी आए हो मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ए भी आए ता बेबे नानकी जी दे दर्शन कीते। इन्हां ने हाथ जोड़ के आखे है बेबे जी गुरु नानक साहब आए ने ता बेबे नानकी जी कहन लगे हाली आए ते नहीं पर जद बसंत रुत ने आना होवे ठंडी हवा पहला चलन लग पैंदी बहार ने आना होवे कुंजा दियां डारा पहला उड़न लग पैंदियां ने। जे गुरु नानक दे प्यारे आए ने ते गुरु नानक भी अज जरूर आवेगा। पाईया जय राम गुरु नानक साहब दी याद विच जंगल वाल तुर पए। एक दरख्त दे थले बैठे बड़े वैराग दे विच गुरु नानक साहब दा उचारिया होया ए शब्द गाण लग पए। अमली अमल ना अंबड़ै मच्छी नीर ना होए जो रते सह अपने तिन पावे सब होए। ऐ पातशाह जिस तरह अमली अमल नाल प्यार करदे अमल तो बगैर जी नहीं सकदा मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकदी असी भी तेरे नाल इस तरह

माता तृप्ता जी गुरु नानक साहब नु कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नु मिलो बड़ी वैराग विच है तन गुरु नानक साहब माता नु मिल के बेबे नानकी जी नु मिलन वास्ते उठे ता बेबे नानकी छत तू थले उतरे भज के आए चरणा ते मत्था टेकन वास्ते पर गुरु नानक साहब ने बावां फड़ लिया कहन लगे ना भैण तुसी वड्डे हो भैणा भरावां दे पैरां ते मत्था टेकन ये नहीं हो सकता सत्संग ए इतिहास ये कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद है ये कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है ताकि साढ़े मना विच साढ़े हिरदे विच प्यार होवे जे साढ़े हिरदे विच प्यार होवेगा साढ़े घर विच भी प्यार होवेगा जिदे हिरदे विच प्यार नहीं जिदे दिल विच प्यार नहीं वो किसे नूं की प्यार देवेगा चंगा इंसान बनन वास्ते चंगा पिता बनना जरूरी है चंगा पति बनना जरूरी है चंगा पुत्र बनना जरूरी है चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी बनना जरूरी है जेड़ा चंगा पति ना बन सके चंगा पिता ना बन सके जेड़ा चंगा पुत्र ना बन सके जेड़ा चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी ना बन सके सात संगत ओ चंगा इंसान कदी नहीं हो सकता ओ ना सिख हो सकता है ओ ना मुसलमान ना हिंदू ना ईसाई वो किसे गिनती विच नहीं क्योंकि परमेश्वर ने

दुनिया विच जा रहे हैं बंदगी कर सिमरन कर और दुनिया नू स्वर्ग बना सचखंड बना। एक कथा कहानियां सुननिया अपने महापुरुषां दे जीवन वाल देखने हैं। ओ पति भी ने पुत्र भी ने ओ भरा भी ने ओ सज्जन मित्र भी ने ओ गुरु भी ने ओ पीर भी ने ओना ने दुनिया नू प्यार वंडिया। ते आओ ये कथा कहानियां सुन के असि भी अपने मना विच प्यार रखी साडे मन विच प्यार होवेगा अपने घरदियां नू प्यार देंगे लोकां नू प्यार देंगे ते फिर स्वर्ग लभण दी लोड़ नहीं ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी।

तेह रावण घर खबर न पाई, क्या जाना क्यों मरेंगे कैसा मरना होए, मत कोई जानो अवर कछ।

हर एक जंगल समान है, जिस दे दूर दूर ता बड़ी भयानक अग लगी हुई है। जो अग्नि वड़े वड़े रुखां नूं पले हुए रुखां नूं सारदी तुरी जांदी है, ते जे पिछे वेखिए ता कोमल बूटे होर हरे होंदे आउंदे हैं। अकाल पुरख वाहिगुरु दी रचना

देते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेर उपावो, डूब दे पत्थर तारे। जोड़ा अग्न बराबर तपा, पितर वगे काती, प्रणवत नानक हो।

दा कर्म की है। सतगुरु अपने सिख नूं परमेश्वर दे नाम दे नाल जोड़दा है। परमेश्वर दा नाम हिरदे दे विच दृढ़ करवांदा है और गुरसिख नूं सच्चे सुख दी प्राप्ति करवा दिंदा है। ए सुख जो नाम दे राही प्राप्त हुंदा है गुरसिख नूं साध संगत दे विच्चों प्राप्त हुंदा है और इस दी प्राप्ति तो बाद जितने भी दुख हन कलेश हन इन्हां सारिआं दी निवृत्ति हो जांदी है। सारे ही संसे दूर हो जांदे हन ते सुखां दी प्राप्ति हो जांदी है। साहिबां दा फरमान है।

गुरु दी जय जयकार करदा है। इस जय जयकार दे पिछे इको ही गल है जो राज दी है, क्योंकि गुरु तो बिना होर कोई ऐसा नहीं जो प्राणी मात्र लई मुकत दा द्वार खोल सके। नौ दरवाजे दसवां द्वार, बुजरे ज्ञानी एहो विचार, एहो ही ब्रह्म दी विचार है। और जेड़ी विचार गुरु तो बिना होर कोई दे नहीं सकदा। साई फरमान करदे हन, गुर कीनो मुक्त द्वारा सब सृष्ट करे जयकारा, क्योंकि दुनिया विच कोई किसे दी एक दिन दो दिन महीना जा साला बदी मदद कर सकदा है, मगर परमात्मा जो है ओ गुरु राही इस संसार दे विच आके सारे संसार नू फिर परमेश्वर दे नाल जोड़दा है। साई फरमान करदे हन, क्योंकि गुरु ही है जेड़ा दोबारा इस मनुख नू परमात्मा दे घर तक पहुंचा सकदा है। और ऐसे दा ही साथ सच्चा है, जो सच्चे गुरु दा साथ करदा है ओ ही सच्चे परमात्मा नू पा सकदा है। साहिबां दा फरमान है।

तू बहुत सियाना है, बड़ा समझदार होगा। फिर भी तू उन्हां नूं पुछ लै, ताहू खरे सुजान बंजा इहदी कपड़ी, जेड़े इन्हां पानियां चो लंघे होए ने किसे नवे पतन ते आ जावे, किसे नवे नदी दरिया ते पहुंच जावे, उथो लंघन दा मसला पैदा हो जावे ना। तू भावे किड्डा वड्डा तारू है, फिर भी तू उन्हां नूं पुछ लै जेड़े इस राह तो लंघे, पता नहीं किथे भंवर होवे, किथे पानी दी की दशा होवे। इस राह विच लंघन वास्ते चंगा रवे जे तू किसे दारू नूं जेड़ा इथों लंघिया होवे उन्हूं पुछ लवे, इथों तू किवें लंघिया सी, की हालत है इथों। इसे तरह धर्म दे मार्ग ते बंदा किन्ना होशियार ते चलाक होवे, धर्म दे मार्ग ते उन्हां लोकां दे नाल इह गल कर लैणी, लालन रावया कवन गति री, तू किस तरह पति नाल प्यार कीता है, तू प्रभु नाल किस तरह प्यार पाया, प्रभु नाल तेरी सांझ किवें पक्की होई है, तू प्रभु नूं किवें पाया। सखी बतावो मुझे मतीरी, मैनू भी कोई मत दे, चाहे पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी, जिन्हां सुहागणा ने घर स्वर्ग बना रखे ने, जिन्हां दे घर दे विचों खुशियां ते खेड़िया की खुशबू उठती है, उन्हां नूं पुछ लेना चाहीदा है यह खुशबू तुहानूं किवें प्राप्त होई, इस घर नूं स्वर्ग तुसां किवें बनाया। चाहे पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी, जिन्हां घरां चो कलेश उठदा होवे, जिथे प्यार की कोई सांझ ना होवे, उन्हां नाल गल करन दी भी की लोड़ है, मत उन्हां नूं कोई कुमत ऐसी मन च आ जावे, उन्हां दे कोलों कोई ऐसा रंग चढ़ जावे कि अपना भी जीवन खराब कर पई, उन्हां दे नेड़े होईए जिन्हां दे जीवन च सुख नजर आउंदा, जिन्हां दे जीवन च आनंद नजर आउंदा। चाहे पुछो सुहागणी तुसी रावया किन्नी गुणी, ओ जेरे संत भगत परवान जो प्रभु आया, सही विचखण जंत जिनी हर ध्याया, जिन्हां दे बारे सुखमणी साहिब पढ़ने जो जाने ते सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभु सोए, ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया, जो आप चल सकदा है धर्म दे मार्ग ते किसे होर नूं तोरन दी समर्था रखदा है, एहो जिहे बंदे नूं लभ के ओहदे नाल मित्रता पाई सोभा लाहेवंदी रहिंदी। ते जिस दिन कोई मिल पैंदा है, धन गुरु नानक दा सवारे आया भाई मन सुख, जिस दिन महाराज शिवनाभ नूं मिले सी, ओ वर्तां पूजा करमां बेंत तरह दीआं रस्मां च फसिया आया बंदा, जिस वेले भाई मन सुख दे दर्शन कीते हैरान हो गया, ए तां कोई वर्त नहीं रखदा, ए तां कोई पूजा नहीं पिया करदा, ए तां कोई पखंड नहीं पिया करदा, ए तां कोई रचना नहीं रची बैठा, मेरे सारे राज विच मेरे हुक्म अनुसार धर्म करम पिया चलदा है, ते ए बंदा उस तों बागी होके इहदे नेत्रां च ये मस्ती है, किस तरह हो सकदी। उहनूं कहिंदा सजणा ए नेत्रां दी मस्ती, ए बोलां दी मिठास, ए जीवन दे विच हुलारा ते आनंद तैनूं कित्थों मिले। ते भाई मनसो कहिंदे ने गुरु नानक दी मत लै के, गुरु कोलों समत लै के, गुरु कोलों जज सेख के जीवन दा आनंद अपने आप आए, चरणा ते पै गया। कहन लगा सजना मैनू भी दस फिर ए आनंद मैनू किवें आ। भाई मनसुख फिर अपनी पूजा करवाउण नहीं बह गए, राह दस दिता। कहन लगे प्यार ओहदे नाल कीता सी, उहने बांह फड़ के अपने बना लिया, प्यार ओहदे नाल कर ते तैनू भी बांह फड़ के अपना बना लेगा। कहिंदा मैं लब्भा कित्थों, प्यार किवें करा। भाई मनसुख हस पै, कहन लगे महाराज शिवनाभ जे प्यार करके प्यारे नूं लभना पै फिर कहदा प्यार कीता, तू प्यार करके प्यारा आपे खिचिया तुरिया, प्यार विच इहदी खिच पैदा कर, ओ आपे तैनूं लभदा फिरे, तू उहनूं लभण ना जावे बल्कि तैनूं ओ लभदा फिरे। ऐसी चिंग ला दित्ती, ऐसी रचना रच दित्ती उस राजे दे अंदर, धन गुरु नानक खिचे चले गए, राजे शिवनाभ दे प्यार ने गुरु नानक साहब नूं सगला दीप खिच लिया, कि ओ प्यार करना सानूं भी आ जाए, या इहो जिहा प्यार करना सानूं

बौद्ध सुख है, पूर्ण सुख है। प्रभु सिमरन विच अधूरा सुख नहीं, छोटा मोटा सुख नहीं, अल्प सुख नहीं है, परम सुख है, पूर्ण सुख है। ते गुरु नानक दा दर संसार दे लोकां नूं दुखी देखना नहीं चाहता, देख ही नहीं सकता। गुरु नानक दे दर ते आपां पढ़दे हां, गुरु नानक देखदे ने संसार सुखी नहीं, ते दर्दमंद गुरु नानक लोकां नूं सुख वंडन तुर पैंदे ने। बाबा देखे ध्यान तर जल्दी सब पृथ्वी दिस आई, उठ के तुर पैंदे। धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह अपने माल की दरगाह चरजोई कर दे, जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा दार, जित द्वार है उपरे तित है लेओ बार, जिवें बचदा ही बचा। इन्हां तपदियां सर्दियां नूं जिवें शांति दे सकना मेरे साहिब उवें ही दे। जिस राह तो जिस दर तो कोई तेरे नाल जुड़दा है जोड़ दे। साहिब टुटे हुए मनुख नूं, बिखरे हुए मनुख नूं, बेचैन मनुख नूं निरंकार नाल जोड़ के सुखी कर देना चाहते, इन्ना भर देना चाहते ने सुख नाल के मनुख आप भी सुखी होवे ते आले दुआले नूं भी सुख बने। इथे भी कहते ना, आप ही सुख पा, होरना नूं भी जपा ते उन्हां नूं भी सुखी कर। सिमर सिमर सिमर सुख पावो, जप के सिमर के मुड़ मुड़ के सिमर के सुख लै लै, आनंद लै लै। सर्व कल्याण सुख नित नाम, नाम वो खजाना है जिस सारे सुख ने, ते जिन्होंने इस सुख नू प्राप्त करने का यतन किया है उन्होंने जे कितने किनका मात्र भी इसका सची मुची प्राप्त हो गया है, थोड़ा जिहा भी उन्होंने रस आ गया है। साहब कहते ने मैं उनकी वडियाई नहीं दस सकता, संकल्प भी बख्शिया है, आपा संकल्प करिया करिए, मन में एक इच्छा करिया करिए, आशा करिया करिए, सिमरों सिमर सिमर सुख पावो, जपदा हां जप जप के सुख पावांगा, कल कलेश तन माहे मिटावो। जीवन विच शरीर विच वरते हुए कलेश पाप सारे धोते जाणगे। सिमरों जात विसुंभर एक है, वो जरा विश्व दा मालिक वाहिगुरु अकाल पुरख है, उसनू याद करा, उसनू चेते करा, उसनू जपा, जिसनू अगे भी बड़े याद करते। नाम जपत अगणत अनेक है, वेद पुराण सिमरत ये सारे जिसकी सिफत करते ने, शुद्ध अखरां नाल जिहड़े उहनू याद करते ने, शुभ बचना नाल शुभ भावना नाल जिहड़े उहदी उस्तत करते ने, उसनू याद करने वास्ते एक अखर की लोड़ है। कैसी कमाल की गल है, साहब कहिंदे तेरे हिरदे च वस जाए ना, आप पढ़ते हैं, एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल, उहनू याद करने वास्ते एक अखर की लोड़ है। और वो अखर कैसा है, सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, वाहिगुरु अकाल पुरख नूं चेते कराउण वाला कोई एक नाम। वैसे सतगुरु ने धन गुरु नानक ने संसार नूं उसकी महिमा बेअंत, उसकी लखी ना जाई जाण वाली लीला, उसकी महान वडियाई नूं आश्चर्यता दे रूप च मानदे आ, आनंद दे रूप च, विस्माद दे रूप च आनंद लैके मानदे होए आ, सानू जपण वास्ते वाहिगुरु शब्द बख्श, स्वाद लैके विस्माद लैके आनंद लैके उन्हूं याद करिए। कहन ना जाई अचरज विस्माद वाली अवस्था विच आ, जिसले उन्हूं इस तरह याद करांगे बड़ा चैन, भगत जना के मन विश्राम, भगतां नूं जपण वालियां नूं चैन आ जांदा, सुख आ जांदा। इसे करके महाराज ने इत्थे प्रेरणा की, आओ गुरमुखो आओ संत जनो आओ सजनो आओ भगती भाव की इच्छा रखण वाले हो, साजन संत करो ये काम, असल तो जिंदगी मिली इसे वास्ते, काम ही जिंदगी का है, जिंदगी की प्राप्ति का प्रयोजन यही। आप अगे भी पढ़ने हैं, जिस वखर को लैण तू आया, जिस काम वास्ते तेन भेजिया गया है, जिस मकसद वास्ते तेन जीवन मिले, राम नाम संतन घर पाया,
प्रभु प्यार वाले लोगों के बैठ के इन्हां नाल मिल के तेनू ये वस्तु प्राप्त हो जाए। संतां दे घर विचों गुरु नानक दे घर विचों तेनू ये वस्तु प्राप्त होगी। ताजब मान ले हो मन मोल हंकार छड़ के, क्योंकि हंकार दे मामले च महाराज ने बड़ा स्पष्ट वचन कीता है, होमे नावे नाल विरोध है दोए ना वसे एक ठान। हंकार ते नाम एक हिरदे च कठे नहीं वस सकते, नाम वसाउना हिरदे च ते होमे कढ़नी पएगी, निम्रता धारण करनी पएगी। जिन्हां ने निम्रता नूं धारण कीता है नाम अपने आप हिरदे च प्रवेश कर गए। साहब कहिंदे ने ताजब मान लेहो मन मोल राम नाम हिरदे मैं तोल, फिर लाद खेप संतह संग चाल। ए सौदा लद के, ए राम नाम दा सौदा लद के सतसंगियां दे नाल तुरदा रहो, उन्हां दे नाल रलिया रहो, मिलिया रहो उन्हां दे नाल। अमर त्याग विखिया जंजाल, माया दे जेड़े बोझ शरीर दे उत्ते मन दे उत्ते पाए ने छड़ दे, हिरदे विच नाम नूं थां देनी है ते फिर माया नूं थां ना दे। इनू वरतदा चला जा, इनू सिमरन ना लग जा, इनू याद ना करन लग जा, इनू हिरदे च ना बना के बैठ जा। अमर त्याग विखिया जंजाल, फिर वे कैसा आनंद बनता है। धन धन कहे सब कोए जय जयकार हो जाए। संसार विच भी होवेगी ते मुख उजल हर दरगाह सोए, दरगाह विच जाके भी मुख उजला होवे। ये गल वखरी है, भागा वाले ने जिन्हां नूं समझ आई है, ये वापार विरला वापारे नानक तंक है सद बलिहार है। मैं उस तो बलिहारने जांदा, साहब कहिंदे ने जिन्हूं ये वपार करना, और पहला भी किया है, जे तैनूं ये वपार करना आ जावे कर लवे चंगा रहेगा। हलत पलत दोए लेह सवार, तेरी जिंदगी भी सौर जाए, तेरा भविखत भी सौर जाए, परलोक भी सौर जाए। राम नाम अंतर और धार, हिरदे दे अंदर धारण कर ले। राम नाम अंतर और धार, जे किवें जे तेरे हिरदे च नहीं वसदा, तेनू जाच नहीं आउंदी, तेनू समझ नहीं आउंदी, तां पूरे गुरु की पूरी दीखिया, पूरे गुरु कोलों इह सोझी प्राप्त कर, पूरे गुरु कोलों उपदेश लै, पूरे गुर का सुन उपदेश, पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसै तिस साच परीखिया। हर औखे सौखे समय विचों वो सच्चा बंदा सच नूं हिरदे च वसाउण वाला सुखी होके निकल जाए। मन तन नाम जपो लिवलाए, दुख दर्द मन ते पहु जाए, सच व्यापार करो व्यापारी, ए व्यापार करने वास्ते तू आए। दरगाह निभे खेप तुम्हारी, ए सौदा तेरा दरगाह तक निभ जाने वाला। क्योंकि साहिबा ने जीवन दे ते परलोक दे रस्तियां बारे, उनकी औकड़ा बारे ते नाल निभ जाने वाली इस वस्तु बारे बड़ा स्पष्ट किया। साहब कहंदे ने जे पैंदे के गणे जाहे ना कोसा, जिस राह दे को नहीं गिने जा सकते, हर का नाम ऊहा संग तोसा, उथे नाम तेरे नाल निभ जाने वाला दोषा साबित हो। जे पैंदे महा अंध गुबारा, जिथे चानण दा होर कोई साधन नहीं, हर का नाम संग उजियारा, जिथे सूरजा दा चानण बेकार है, उथे नाम दा चानण आधार है। जहां पंथ तेरा को ना सिझाणू, अपने भरा मित्र पुत्र जिस राह ते तेरे वाकफ नहीं बनणगे, हर का नाम तह नाल पछाणू, उथे तेरा साझीदार होके निभेगा, साथी होके निभेगा। जय महा भयान तप्त बहु काम, जिथे अग वरदी जापदी, कीते हुए कर्मां दे फल वजों, माड़े कर्मां दे फल वजों जिथे तपशां व्यापदियां ने, उथे जे नाम जपिया होवे ते हर के नाम की तुम ऊपर छाम, ठंडका देवेगा तेनू, उन्हां तपशां तो बचावेगा। ओदे बारे साहब कहंदे ने सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निभे खेप तुम्हारी, एका टेक रखो मन माहे, जे तू एक उस दा आसरा रख के चले, नानक बौर ना आवे जाहे, तेनू मुड़ के आना जाना नहीं पएगा, जिंदगी दा मनोरथ पूरा हो जाएगा। वो मनोरथ जिंदगी दा की है।

किन्ही निवल भुयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे। तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वेसा किन्ही ग्रह

पंडित सासत सिमृत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर

मैं मूर्ख हर आस तुम्हारी, खत्री कर्म करे सूरत तन पावे, सूद वैस पर कृत कमावे। मैं मूर्ख हर नाम छड़ावे, सब तेरी सृष्ट तू आप रया समाई।